0: দেশবন্দনা শুনলাম সমবেত কণ্ঠে। এবার কিন্তু ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতি, তারপরে আপনাদের চিঠিপত্র নিয়ে আসব। হ্যাঁ, ঠিক 2 মিনিটের একটা বিজ্ঞাপন বিরতি নিয়ে আসছি।
1: সেবা মতলব লোগো কে সাথ খড়ে রহনা, উনকে জীবন মে বদলাব কে সাথী বননা। ইসি সোচ কো আগে বড়াতে হুয়ে 17 সিতম্বর সে 10 অক্টোবর তক পুরে বঙ্গাল মে মানায়া যা রহা হ্যায় সেবা সংকল্প অভিযান।
2: इस अभियान के अंतर्गत हैं कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जैसे 17 सितंबर शाम 7 बजे विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी और उनके परिवार एक साथ दीप प्रज्वलन के माध्यम से लेंगे आशीर्वाद का दिया का विशेष संकल्प।
1: मेरे सपनों का भारत चित्र सेवा में छात्र छात्राओं के लिए ड्राइंग और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा।
2: नमो सेवा लाभार्थियों की अनकही कहानी में नाट्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से जन कल्याण की कहानियां सामने आएंगी।
1: आंगन मिलन सेवा के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण, स्वास्थ्य और महिला केंद्रित जन कल्याण कार्यक्रमों में जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।
2: और सेवा की कहानी के माध्यम से लाभार्थियों के वास्तविक अनुभव और प्रेरणादायक कहानियां वीडियो रील्स के जरिए लोगों तक पहुंचेंगी।
1: 7 अक्टूबर को सेवा ज्योति कलश यात्रा के माध्यम से गठन होगा विकसित भारत 2047 का संकल्प, जिसकी अगुवाई करेंगे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।
2: इसके साथ ही सेवा में योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवा के रंग देश के संग और सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज जैसे अनेक जन कल्याण मूलक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

0: এখন শুনবেন সেবা দিবস উপলক্ষে ভারত সরকারের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মাননীয়া শ্রীমতী রক্ষা নিখিল খার্সে কলকাতা সাইয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রদত্ত ভাষণের উপর একটি বেতার প্রতিবেদন। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কলকাতায় পৌঁছায়। অবিশ্রান্ত বাড়িধারায় তার যাত্রাপথ বারবার বিঘ্নিত হয়, তা সত্ত্বেও তিনি বিধাননগরে এসে অনুষ্ঠানে সামিল হন এবং শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠানকে সফল করে তোলেন। যাওয়ার আগে তিনি জাপানের নাগোয়ায় এশিয়ান রাগবি দলের মহিলা খেলোয়াড়দের সঙ্গে মিলিত হন এবং তাদের সাফল্য কামনা করেন। ঘুরে দেখেন সাইয়ের নানা কর্মকাণ্ড, সংক্ষিপ্ত বৈঠক করেন সাইয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে তারপর সামিল হন উৎসব প্রাঙ্গণে। চলুন রতন কুড়ির সঙ্গে বিধাননগরের সাইয়ে কি বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মাননীয়া রক্ষা নিখিল খার্সে।
1: ऑफिसर माय भारत के हमारे सभी ऑफिसर और माय भारत के सभी वॉलंटियर और हमारे सभी एथलीट सबको मेरा नमस्कार। एक्चुअली आज इस रीजनल साइंस सेंटर में मुझे पूरा दिन रुक रहा है, विजिट ये सेंटर का था, बट रेनी की वजह से, बारिश की वजह से मुझे आज मतलब काफी ट्रैफिक में भी हमें मुश्किल पड़ी तो हम पहुंच नहीं पाए और इसलिए आज का विजिट मुझे लगता है इनकम्प्लीट ही रह गया। लेकिन नेक्स्ट टाइम पूरा दिन के ये पूरा साइंस सेंटर विजिट करोगे क्योंकि ये हमारे लिए काफी एक इम्पोर्टेंट सेंटर है और जैसे नॉर्थ ईस्ट भी हमारे ये सेंटर से कनेक्ट है और काफी बड़ा अच्छा सेंटर है हमारा। और आप सभी को पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का भी आज बर्थडे है और उनके जन्मदिन के अवसर पे पूरे देश में उनको शुभकामनाएं देने के लिए एक दिया हम जला रहे हैं कि आज आपके सबके प्रेजेंस में हमने उन्हें शुभकामनाएं भी हमने दी है। और सबसे अहम बात मैं कहना चाहूंगी कि आदरणीय हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने हमेशा से कोशिश की कि हमारे देश के खिलाड़ियों का भविष्य अच्छा रहे, हमारे देश के युवाओं का भविष्य अच्छा रहे क्योंकि आने वाले साल विकसित भारत का जो सपना है तो हमारे देश के सभी युवाओं के माध्यम से हमें वो पूरा करना है। और इसीलिए कोशिश चल रही है कि जितने भी हमारे साई के सेंटर है या स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे ज्यादा से ज्यादा हम कैसे अपग्रेड कर पाए, ज्यादा फैसिलिटी हम हमारे सभी एथलीट्स के पास कैसे पहुंचा पाए, इसलिए हमारा प्रयास चल रहा है। और एज ए बीइंग ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी एथलीट्स के साथ जाके बात करें, उनके साथ इंटरेक्शन करें कि सभी फैसिलिटी उन्हें अच्छे से मिल रही है या नहीं मिल रही है, या कोई दिक्कत उन्हें कोचिंग के वक्त आ रही है। सभी कोचेस यहाँ पे जितने भी हमारे कोचेस है उन्हें यहाँ पे आपके साथ एक अच्छी सुविधा मिल रही कि नहीं मिल रही, इस सब के बारे में जानने का एक ये आज का प्रोग्राम था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं पाया, पर जैसे मैंने पहले भी बताया कि विद इन 2-3 months आई विल ट्राई टू कम अगेन या एंड स्टे फॉर 1 or 2 days सो कि मैं अच्छी तरह से पूरा विजिट कर पाऊंगी। और आप सबको मिलके अच्छा लगा क्योंकि आज का काफी शॉर्ट पीरियड है लेकिन आप सब लोग आए, बारिश रहने के बावजूद भी आए, खास करके हमारे सभी माय भारत के वॉलंटियर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप भी बहुत इतने दूर से आए और रात का समय इतना ट्रैफिक है, बारिश है तो भी आप सब लोग आए। और माय भारत की तरफ से भी काफी अच्छी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, आप सबको पता है कि PBYT का प्रोग्राम भी अभी शुरू है, क्विज कॉम्पिटिशन हमारा शुरू है कि जो सबसे बड़ा प्रोग्राम हमारे मिनिस्ट्री का है कि लगभग पूरे देश में से नियर अबाउट 50-60 lakh यूथ पार्टिसिपेट करते हैं उसमें और 3000 यूथ का फाइनल होता है कि

0: समय इतना ट्रैफिक है, बारिश है, तो भी आप सब लोग आए और माय भारत की तरफ से भी काफी अच्छी एक्टिविटी हम कर रहे हैं। आप सबको पता है कि वीवीएलटी का प्रोग्राम भी अभी शुरू है, क्विज कंपटीशन हमारा शुरू है कि जो सबसे बड़ा प्रोग्राम हमारे मिनिस्ट्री का है कि लगभग पूरे देश में से नियर अबाउट 50-60 लाख यूथ पार्टिसिपेट करते हैं उसमें और 3000 यूथ का फाइनल होता है कि जब उनके माध्यम से सुनते हैं। तो मुझे लगता है कि युवाओं के लिए काफी अच्छा मौका है कि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने आइडियाज गवर्नमेंट के साथ शेयर करें। कुछ अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं तो माय भारत के माध्यम से वो सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो एक युवाओं का एक अच्छा डेवलपमेंट करने की कोशिश यूथ मिनिस्ट्री के माध्यम से पूरी की जा रही है और उसी तरह स्पोर्ट्स कल्चर पूरे देश में हम कैसे पहुंचा सके उसके लिए भी सरकार पूरा प्रयास कर रही है। मैं आप सभी एथलीट से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आपको भी जब मौका मिले या आप घर पे जाओ या यहाँ पे भी आप मौका मिले तो आप भी अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि स्कूल कॉलेजेस तक आप स्पोर्ट्स के बारे में अवेयरनेस आप पहुंचा सके, वहाँ पे स्पोर्ट्स के बारे में आप बता सके कि स्पोर्ट्स आने वाले सालों में एक बड़ा करियर अपॉर्चुनिटी बनने वाला है। क्योंकि आप देख रहे कि आने वाले 10 साल हमारे इंडिया के लिए स्पोर्ट्स सेक्टर में काफी इम्पोर्टेंस है क्योंकि कॉमनवेल्थ हम इंडिया होस्ट कर रहा है, ओलंपिक होस्ट करने की तैयारी हमारी चल रही है और इस सब में हम विकसित भारत की जब बात करते हैं तो स्पोर्ट्स की काफी अहम भूमिका उसमें रहने वाली है, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट की काफी अहम भूमिका रहने वाली है। तो करियर अपॉर्चुनिटी के लिए भी काफी एक बड़ा सेक्टर अभी स्पोर्ट्स सेक्टर आने वाले दिनों में हमें दिखाई देगा। तो मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि आप एक सिलेक्टिव एथलीट्स हो कि जिनको यहाँ पे आने का मौका मिला। जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में आईआईटी फेमस है, वैसे स्पोर्ट्स के बारे में हमारा साई सेंटर फेमस है। तो आप बहुत लकी सभी एथलीट्स हैं क्योंकि आपका यहाँ तक पहुँचने का सफर इतना इजी भी नहीं है, काफी मेहनत आप सब लोगों को लगती है यहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन यही मेहनत आप कंटिन्यू करते रहिए कि जब तक आप अपने देश के लिए मेडल ना लाए और उसके साथ ही हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स कल्चर हम कैसे बढ़ा पाए। क्योंकि आज हम देखते हैं कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन इंडिया के पास है और इंडिया के पास इतना यूथ पॉपुलेशन होने के बावजूद कई चीजें यूथ फेस कर रहा है। तो हम जैसे युवाओं की भी जिम्मेदारी है कि हम युवाओं को एक अच्छी राह बताए, जो काम आप कर रहे हो जहाँ तक आप लोग पहुंचे हो तो उसके बारे में भी आप युवाओं के साथ अपने विषय को आप शेयर कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा युवा आप स्पोर्ट्स के साथ जुड़े या सोशल एक्टिविटी के साथ जुड़े। क्योंकि आप जब तक मोटिवेट नहीं करोगे तब तक और दूसरे युवा भी आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। तो मेरी आपसे सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जहाँ जहाँ आपको मौका मिलेगा आप युवाओं को जोड़ने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए। क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या हमारे युवाओं के साथ है कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है। तो इन सब चीजों से अगर हमारे युवा साथियों को अगर हमें बचाना होगा तो हमें भी एक हाथ उनकी तरफ बढ़ाना होगा और ये काम आप सभी लोग कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सबकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेशन बिल्डिंग के लिए आप भी आगे आए और इस देश को विकसित बनाने में अपनी भूमिका आप निभाए। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।
1: এতক্ষণ শুনছিলেন সেবা দিবস উপলক্ষে সাই আয়োজিত অনুষ্ঠানের উপর একটি বেতার প্রতিবেদন, প্রতিবেদক রতন কুড়ি, প্রযোজনা আকাশবাণী কলকাতা ক্রীড়া বিভাগ, প্রযোজক হর্ষ পাণ্ডে।
2: আতশ কাঁচের তলায়
3: চলে যাব বিস্তারিত খেলার খবরে। নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে ভারত আফগানিস্তান তৃতীয় টি টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে ব্যাট ও বলের দুর্দান্ত পারফরমেন্সে আফগানিস্তানে 127 রানে পরাজিত করল ভারত। এই জয়ের ফলে 3 ম্যাচের সিরিজে আফগানিস্তানকে 3-0 ব্যবধানে হোয়াইট ওয়াশ করল শ্রেয়াস আইয়ারের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল। টসে জিতে প্রথম ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় আফগানিস্তান। শুরু মানে সেদিন ব্যাট টসে জিতে এবং শুরু থেকেই ভারতীয় ওপেনার অভিষেক শর্মা।

0: আকাশবাণী কলকাতা, অনুষ্ঠান শুনছেন গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গে। এখন বিজ্ঞাপন।
1: সেবা মতলব লোগো কে সাথ খড়ে রহনা, উনকে জীবন মে বদলাব কে সাথি বননা। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 17 सितंबर से 10 अक्टूबर तक पूरे बंगाल में मनाया जा रहा है सेवा संकल्प अभियान।
2: इस अभियान के अंतर्गत हैं कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जैसे 17 सितंबर शाम 7 बजे विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी और उनके परिवार एक साथ दीप प्रज्वलन के माध्यम से लेंगे आशीर्वाद का दिया का विशेष संकल्प।
1: मेरे सपनों का भारत चित्र सेवा में छात्र छात्राओं के लिए ड्रॉइंग और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा।
2: नमो सेवा लाभार्थियों की अनकही कहानी में नाट्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से जन कल्याण की कहानियां सामने आएंगी।
1: आंगन मिलन सेवा के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण, स्वास्थ्य और महिला केंद्रित जन कल्याण कार्यक्रमों में जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।
2: और सेवा की कहानी के माध्यम से लाभार्थियों के वास्तविक अनुभव और प्रेरणादायक कहानियां वीडियो रील्स के जरिए लोगों तक पहुंचेंगी।
1: 7 अक्टूबर को सेवा ज्योति कलश यात्रा के माध्यम से गठन होगा विकसित भारत 2047 का संकल्प, जिसकी अगुवाई करेंगे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।
2: इसके साथ ही सेवा में योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवा के रंग देश के संग और सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज जैसे अनेक जन कल्याण मूलक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
1: ये सभी कार्यक्रम जन भागीदारी, सेवा, इनोवेशन, जन कल्याण और देशभक्ति को और आगे बढ़ाने का एक प्रयास है।
2: आइए सेवा के संकल्प से जुड़े देश प्रेम की इस पहल में अपना योगदान दें।
1: पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जनहित में प्रचारित

0: শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে এতক্ষণ শুনলেন তবলা শিল্পী শ্রী কল্যাণ চক্রবর্তী। প্রথমে শুনলেন তাল রূপক, পরে ঝাঁপতাল। শিল্পীকে হারমোনিয়ামে সহযোগিতা করেছেন হিরণময় মিত্র। আকাশবাণী কলকাতা, অনুষ্ঠান শুনছেন গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গে।
1: সেবা মতলব লোকের সাথে খড়ে রহনা, উনকে জীবন মে বদলাব কে সাথী বননা। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 17 सितंबर से 10 अक्टूबर तक पूरे बंगाल में मनाया जा रहा है सेवा संकल्प अभियान।
2: इस अभियान के अंतर्गत हैं कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जैसे 17 सितंबर शाम 7 बजे विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी और उनके परिवार एक साथ दीप प्रज्वलन के माध्यम से लेंगे आशीर्वाद का दिया का विशेष संकल्प।
1: मेरे सपनों का भारत चित्र सेवा में छात्र छात्राओं के लिए ड्रॉइंग और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा।
2: नमो सेवा लाभार्थियों की अनकही कहानी में नाट्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से जन कल्याण की कहानियां सामने आएंगी।
1: आंगन मिलन सेवा के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण, स्वास्थ्य और महिला केंद्रित जन कल्याण कार्यक्रमों में जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।
2: और सेवा की कहानी के माध्यम से लाभार्थियों के वास्तविक अनुभव और प्रेरणादायक कहानियां वीडियो रील्स के जरिए लोगों तक पहुंचेंगी।
1: 7 अक्टूबर को सेवा ज्योति कलश यात्रा के माध्यम से गठन होगा विकसित भारत 2047 का संकल्प, जिसकी अगुवाई करेंगे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।
2: इसके साथ ही सेवा में योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवा के रंग देश के संग और सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज जैसे अनेक जन कल्याण मूलक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
1: ये सभी कार्यक्रम जन भागीदारी, सेवा, इनोवेशन, जन कल्याण और देशभक्ति को और आगे बढ़ाने का एक प्रयास है।
2: आइए सेवा के संकल्प से जुड़े देश प्रेम की इस पहल में अपना योगदान दें।
1: पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जनहित में प्रचारित
0: आकाशवाणी कोलकाता गीतांजलि। एखन सुनबेन रवींद्र संगीत, शिल्पी रीमा दासगुप्ता।

0: গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গে একটু পরেই দিল্লি কেন্দ্র থেকে সংবাদ।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে বিকাশ মেহরোত্রা। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। श्री नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत INS कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश ने 3 प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
2: आज हम एक साथ 3 इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंडओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है।
1: निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इसमें

0: इससे ममता बनर्जी और उपराय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है और चुनाव चिन्ह फुटबॉल खिलाड़ी है। दोनों गुट 6 अक्टूबर को नंदीग्राम और रिजीनगर में होने वाले उपचुनाव में अपने नए नामों और चिन्हों के अंतर्गत लड़ेंगे। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। यह छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिनों की खपत तक ही सीमित रहेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए मतदान कल संपन्न हो गए। चुनावों के लिए कुल 1000 ईवीएम का प्रबंध किया गया था। विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए 20 उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटों की गिनती आज नॉर्थ कैंपस स्थित विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स स्टेडियम परिसर में होगी। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद जीत का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा के हरफनमौला प्रदर्शन और स्पिनर श्री चरणी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया। जापान की टीम 19.5 ओवर में 57 रन पर सिमट गई। श्री चरणी ने 10 रन देकर 4 विकेट लिए, जो T20 क्रिकेट में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। शेफाली वर्मा ने 13 रन देकर 2 विकेट चटकाए। अब भारत का सामना रविवार को बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. India and UAE have reaffirmed their commitment to continued cooperation and coordination in efforts to promote regional peace, security and stability. Prime Minister Narendra Modi yesterday received a telephonic call from President of UAE, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders exchanged views on developments in West Asia. They also discussed new measures to further deepen the India-UAE comprehensive strategic partnership, including in areas of energy, defence, technology, investment and health. The UAE President conveyed warm greetings on the Prime Minister's birthday and congratulated him on India's successful BRICS presidency. Mr. Modi appreciated the participation of Crown Prince Sheikh Khalid in the BRICS summit and the UAE's cooperation and partnership in achieving substantive outcomes under India's presidency. India has expressed a deep concern over the escalating security situation in the Red Sea region. Briefing media in New Delhi this afternoon, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal condemned the attacks on Saudi Arabia's sovereign territory, including attacks targeting civilians and economic assets. He said India had also issued a statement following the attempted attack on the holy city of Mecca.
2: Such attacks, I need not elaborate or reiterate, they vitiate the regional security, they impact or undermine regional peace and security, and also threaten freedom of navigation through the Bab el-Mandeb. And obviously, for various reasons, this is totally unacceptable to us. We hope that there is early restoration of peace and stability in the region.
1: On the collision between a Pakistan Navy vessel and an Indian warship, Mr. Jaiswal said, India had taken note of Pakistan's response to its protest. He categorically rejected the allegations and insinuations made by Pakistan. Replying to a query on the US sanctions on Russia and Iran Act, MEA spokesperson Randhir Jaiswal said, India has conveyed at senior levels of the US administration the possible implications of the act for India's energy security, global energy markets, and overall bilateral relations. He said India continues to source energy from diversified sources. Mr. Jaiswal reiterated that energy sourcing is guided by national interest. He stressed that meeting the energy needs of 1.4 billion Indians is an imperative. The public sector aviation